बोलो सच्चे नाम सच्चे नाम सच्चे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य